पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिक जीव पास जिन हरजन सतगुर संगत पाई तिन तोर मस्तक लिखिया लिखासे।

है हर पूजा जी, तप तप जप है बेमता, तेरे अनेको तेरे अनेको, पढ़ है बहु सिमरत सास जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले।

सब बैरन को आसन करिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ो कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं।

कहु सिमट भव शंकर काठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए ही अचम पव, आदि जुगादि स्वरूप सजियम पव, अवर इच्छा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संघरो, दोष जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस्त हो जो तब सरणी परे, तिनके दोष दुख हमरे,

रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्टरं तद कालाओ कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिंध कर्म सब होई दुठ चाचम सकै न कोई।

Vedanana. कृष्ण जत्था मत चरित्र चारु चुक हो कबले सुधारु कबि वाचन दोहरा जो निज ब्रह्म सो कहा सो कहूं जग माहे जो ते प्रभु को त्याए है अंतर को जाहि दोहरा हर हर जन दोई एक है बेबिचार कछ नाही जल ते उपत रंग जो जल ही बिखा समाहि दोहरा जब आए सुप्रभ को पयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेपते सब हम कहत सुनाए का बाचन दोहरा

सका न कोई। सम्मत 1750 बनो हरण वधी प्रथम सुख दामन प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूल परी लहल्यो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तर सद्रम तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण की ओर अकबर कथा प्रसंग साध असाध जानो नहीं बस बाद बेबाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

कीर्तन की इतनी सेवा प्रवान करनी जी भुल चुक दी मुख्य मां सतगुरु गरीब नवाज शब्द पढ़िया सुनया लिखे लाउण गुरु चरणा ना बन आवे आओ सरम करिए गुरु की कथा ज्ञानी दर्शन सिंह जी होरां पासों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

नमो चरणारविंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बेकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन परतार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहेगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन।

तुम सब ही ते रहत निराल मजानत बेत भेद अरगाल निरंकार निरपकार निर्लंबो आद अनीला नादो संभो ताका मूल उचारत भेदा जाको भेम न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत माह मुड़कत भेद न जानत माह देव को कहत सदा सेवो निरंकार का चीनत नह पेव ताप अपनी बुद्ध है जीती बरणत भिन्न भिन्न तोह तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जीरज सेता जकीनी उत्पज खान बहुर रस दीनी कहूँ फूल राजा हूँ बैठाओ कहूँ सिमट भय शंकर काठाओ सिगरी सेठ दिखाई अचम पव आदि जुगात स्वरूप सजियम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बारो सिख संघ हरो दोहर जते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरण परे तिनके दुष्ट दुक्त है मरे पुरख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा हो ताहे सब काला दुष्ट अरिष्टरं तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताकि ताप तनक में हर हो रिद सिद कर्म सब होई दुर्ट छा छप सक न कोई एक बार जिंत मैं संभारा काल पास ते ताहु बारा जिन नर नाम तिहार रुका दर्द दुष्ट दुख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाँ दे लेहु बारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता केल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छ करता श्री अस्तो जो जा पहिं दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछित फल पावे।

पैव चिंद फिरे सिर भार, पैव चराजा तरुण द्वार, पैव सूरज पैव चंद कुह करोड़ी चलत नयंत, पैव सिद्ध बुद्ध सुरनाथ।

हिंदू साला इसाला अंदर स्वरूप पार तीर्थ ना होए रचा पूजा गुरवास बेकार जोगी सुनते हम जे त्यार रख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया कायाकार सत्य मन संतोख उपजै दिन के विचार दे दे मंगे से सगुना सुकर संसार चोरा जारा ते कुड़ेरा खारा बावेकार एक होंदा खाए चले था तेरा पिकाई कार जाल थाल जिया पुरिया लो आकार आकार ओए जे आखें सो तुए जाने तेरा पी तेरी सार नान भगत भुख सलान सच

पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखियो कर प्रगटाक सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिने विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित ला।

सतगुर प्रसाद धन सिरंदा सच्चा पात साहो जिन जग तंदा लाया मोहलत पुनी पाई परी जानी अड़ा घत चलाया।

वेदन कारे कर कर कंत महेलिया रूड़ा हित प्यारे मैं पिर सच सालाहना होर सियाड़ी नाम पतारे गुर मिलिया वेस पलटिया सा धन सच सीगारो आव हो मिलहो सहेली हो सिमरहो सिरजनहारो बैयर नाम सुहागणी सच सवारण हारो गाव हो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो वड हंस महला पहला जिन जग सिरज समाया सो साहिब कुदरत जानो वा सचड़ा दूर न पाली है घट घट शब्द पछाणो वा सच

सफल हो हे देह कामा जेह बागुन गोबिंद भज हो कर्ण सुनहो हर नाम कहो ना।

कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तेह जान।

अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीरा खष्टम मेघ राग वह गावह पंचो संग।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याय रंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाव सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस बिठे सब दुख जाए एक बहादुर सिमरी है करनाओ निधा वैताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसों ही पातशाहियां दे आत्मिक सबरूप हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर